नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में

भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदन वार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दया परः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से भरा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से तुरंत बाद सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 240। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका पांचवां भाग आज आप सुन सकेंगे। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर। संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुन सकेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 रात्रि 11 से विविधा, इसके अंतर्गत भरत व्यास, चेतन आनंद और मोहम्मद अजीज की चर्चा। दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 से सुरीला सफर, दोपहर 2 से त्रिवेणी,

दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे मनचाहे गीत सुन सकेंगे। दोपहर 3 बजे से 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक मालविका अग्निमित्र का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे। मूल संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास की है और हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत का। पिटारा शाम 4 बजे से, इसके अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत रीमा अमरापुर पक्कर से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण, तराने नए पुराने शाम 5:30 से। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 से। विशेष जयमाला शाम 7 बजे से, इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत सुनिएगा असिस्टेंट कमांडर

रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटका बहादुर की शादी, लेखन हरी मेहरा की, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे। रात 9 बजे से छायागीत सुनेगा, रात 10 बजे आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 से और विविधा रात 11 बजे से। आपको याद दिला दें कि रात 9:30 और सुबह 9:30 से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर। संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

अयोध्यावासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोनू दादा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कॉम्पिटिशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे।
2: जी,
1: वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे?
2: मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
1: हाँ।
2: क्योंकि मैं 17 साल का था।
1: जी।
2: मगर मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव राव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो।
1: जी जी जी।
2: फॉर्म भरिए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि गुरु आप है या मैं हूँ।
1: वाह।
2: उस दिन मुझे गुरु की अहमियत मालूम पड़ी और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर बोल नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है गुरु। क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता।
1: बिल्कुल।
2: पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसीलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने फॉर्म भर दिया गुरुजी की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए।
1: क्या बात है।
2: तो बंबई से हम दोनों ही फर्स्ट आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह है, और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी, ये कई लोगों को मालूम नहीं है।
1: जी।
2: तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता था।
1: जी।
2: हम लोग पहुंच गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे।
1: जी जी।
2: तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की।
1: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
2: बॉम्बे से।
1: मुंबई से।
2: हाँ
1: जी।
2: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे।

0: जो
1: जी
0: कुछ मेरे से सीनियर भी थे, फिर
1: जी
0: भी मुझे पहला नंबर मिला और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी
1: जी
0: के
1: जी
0: हाथ
1: जी
0: से
1: जी
0: मिला।
1: जी जी
0: मजे की बात यह है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए।
1: क्या बात है, वाह
0: और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बता, अरे सुनो बड़ा अच्छा बजा तो जरा मेरे पास। हाँ,
1: वाह
0: वो तो सूरदास थे तो
1: जी।
0: हाँ बड़ा अच्छा बजाता है, हाँ कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा।
1: जी।
0: रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए,
1: हाँ
0: 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम,
1: जी।
0: उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाएंगे और अगर क्रोमेटिक में जाएं तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर है। और डी के बेस से डी के मिडिल तक आइए, डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो कि 4-5 इंच की डी की छोटी, जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी वही लेके मैं पहुंच गया।
1: और स्वर सप्तक भी कुछ होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए ऐसा।
0: हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंद्र का है और डी से छोटी वाली वो मध्य है,
1: जी।
0: और उसमें मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ तो फिर तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक की बांसुरी आपके पास होनी चाहिए।
1: जी।
0: वो कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे,
1: किशोर दादा
0: किशोर दा गा रहे थे।
1: क्या बात है।

0: ऐसा दादा गा रहे थे कि मेरे आंखें से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने
1: जी, जी।
0: वो बस जहां मैं बैठा हूँ आपके सामने इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो जेम्स
1: जी जी
0: और मेरे पास जो बैठ के तारशानाई बजा रहे थे वो थे दुखी बाबू। इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं, पूरा नाम है दक्षिणा मोहन टैगोर
1: जी जी।
0: और मैं था इतना पतला दुबला कि आप कल्पेश को देख रहे हैं ये भी मेरे सामने मोटा है
1: जी जी जी
0: इतना पतला। आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखेंगे तो मेरे वेबसाइट में है तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है। तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है, और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ, बोले खाक तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है।
1: अरे
0: मैंने बोला मैं खाता हूँ, बंगाली में बोले खबर खास ना तो की चोरी रही अवस्था, पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं। तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए, वो सोचे कि ये खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खाया हुआ था मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो
1: जी, जी,
0: तो मैं फिर खा लिया। वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल। बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे का शिफ्ट होता था और मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में।
1: अच्छा, बहुत बड़ी कीमत थी 10 रुपए।
0: 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। वो रविंद्र जैन के वहां भी फाइन लिया मेरे से और 140 रुपए पेमेंट था, जो काफी था, ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया, ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए। दुखी बाबू मुझे ले गए, पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है और 100-piece ऑर्केस्ट्रा और वो 40 वायलिन सिम्फनी की तरह और चेलो और डबल बेस, अपराइट बेस जिसको बोलते हैं, वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं वो डबल बेस वही लोग बजाते थे, क्योंकि वो चेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता है, खड़े खड़े जो बजाते हैं, बाद में बेस गिटार ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था
1: जी जी।
0: और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, पंचम ऐसे ठहाका लगाते थे देख किसको लाया हूं, तू बोलता था ना हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल, तब हरिजी भी नए थे और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास चले जाते हैं
1: जी जी।
0: तो ये बांसुरी वाला ही लाया हूं मैं पंचम दा। वो फिल्म सेंटर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के एक फोटो आज भी है, ले गए और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है, बंगला में बोले, तू नोटेशन लिखते जानिश। आमी बोललाम हाँ दादा मैं जानता हूँ। तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है? मैंने बोला नहीं, मैं तो एक ही फिल्म में बजाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग खमाज आता है?
1: अरे।
0: बोले खमाज सुना दे। और जब मैंने बनारसी अंदाज से खमाज बजाया गले लगा लिए मुझे।
1: क्या बात है,

0: वाह, इसको कहते हैं साधक, साधना यही है
1: ये
0: उसकी।
1: है।
0: जी
1: तब मुझे उस दिन मालूम पड़ गया कि उनका फेवरेट राग खमाज है। बाद में जैसे जैसे मैं उनके साथ बजाने लगा, तब मालूम पड़ा कि उनके आधे गाने तो खमाज में ही हैं। फिर
0: जी
1: उनके सिटिंग रूम मैरीलैंड, उसमें हारमोनियम में खमाज बजाया, पंचम दाने और एक गाना तैयार। ऐसे खमाज के सिद्ध पुरुष थे वो।
0: जी
1: वो पीस जो पहला पंचम दाने मुझे दिया, याद आ रही है, मेरे बांसुरी से ही गाना शुरू होता है,
0: जी

0: 噔噔，
1: 这样吧。क्या बात है।
0: मैं कैसे बजाया मेरा मन ही जानता है, क्योंकि 24 फ्लूट मेरे पास थी नहीं। और उसको मैंने कुदरती गाने का जो सुर था, ये जो पीस है ये पंचम को साग करके ही बज सकता है अच्छा, क्योंकि उस तरीके का मेरे सा से बजाऊंगा तो नहीं आएगा।
1: जी जी,
0: मेरे अंदर ना डर नहीं था। अगर मेरे सामने लता जी खड़ी है तो मैं डर जाऊंगा, ये शुरू से नहीं था। जब ये पीस बजाया तो एक दिन में इंडस्ट्री में नाम हो गया।
1: क्या बात।
0: पंचम दा मेरे पास आया, बोले तेरा सेट कहाँ है? बोले नहीं है, सेट लिए बिना आना नहीं, पहले जाके खरीदो। तो उस जमाने में मैं उनको याद कर रहा हूँ, उन बड़े लोगों को, रामचंद्र धोत्रे साहब थे। उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जैसे तू कमाएगा मुझे देना, पूरा सेट लेके जा। एक एक बांसुरी चुन चुन के, चुन चुन के, चुन चुन के, जो सुरीला था मैंने उठाया।
1: क्या बात है, वाह।
0: और पूरा सेट जाके बॉक्स बनवाया। और पंचम दा ने आरडी एफसी लिखते थे, आरडी बर्मन, एफसी माने फिल्म सेंटर। महीने का 25 डेट मुझे मिल गया, मुझे तो चांदी हो गई।
1: वाह।
0: अरे उस जमाने में महीने में 15,000 रुपए मैं कमाने लगा। तो पैसे का जो मुझे सहारा मिला फिल्म इंडस्ट्री से, पिताजी चिंतित हो गए कि अब इसका क्लासिकल कहीं छूट ना जाए, ये पैसे के पीछे लग गया है। मगर गलत साबित उनको मैंने किया, मेरी वाइफ भी जानती है, और उसके आने के बाद भी वो दौर मेरा जारी रहा।
1: जी जी।
0: जो 1980 से मैं रात को रियाज करता था। तो जो लोग कहते हैं कि सुबह का राग सुबह ही रियाज करना चाहिए, ये सब मैं मानता नहीं। रियाज जब भी करो उसका फल मिलता है।
1: जी।
0: रियाज में हम अपनी गलती सुधारते हैं, प्रोग्राम में फिर हम फाइन रेडी माल जाके पेश करते हैं।
1: जी।
0: एक बार माँ अन्नपूर्णा देवी, हमारी पहली गुरु माँ, रविशंकर जी की फर्स्ट वाइफ,
1: गान सरस्वती,
0: हाँ गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी से किसी ने कहा कि आप प्रैक्टिस कब करती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा देवी बोली मेरा एक टाइम है वो सुनना चाहती हूँ। तो बोले क्यों, तुम मेरा गंदगी देखना चाहते हो, शौक है तुमको, तब तो मैं अपनी सब बुराइयों को ठीक करती हूँ, तो वो क्यों सुनना चाहते हो। प्रैक्टिस इज ए लोनली एक्सपीरियंस।
1: बिल्कुल।
0: रियाज एक अकेले में करने की चीज है। जब तक आप डूबेंगे नहीं, एक लाइन मैंने लिखी है, तू अगर खुद को खो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता।
1: क्या बात है।
0: तो आपसे गुजारिश है कि आज के एपिसोड में आप याद आ रही है लोगों को सुनवा दीजिए।
1: जी।

फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हुसन लाल भगतराम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कानन देवी की आवाज में हॉस्पिटल फिल्म का गाना। इसे लिखा है पंडित भूषण ने और संगीत से सवार है कमल दास गुप्ता ने।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में नदिया के पार फिल्म का गाना, मोती हैं गीतकार और संगीतकार हैं श्री रामचंद्र।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए मुकेश की आवाज में मेला फिल्म का गाना। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने।
1: है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान

0: कोई संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 कल हुई संपन्न। तीन दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
3: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पर लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता
2: हूं। श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित तीन सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग तीन सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान

0: राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को दो दो पाली और कल एक पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। यह परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और STF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई और जब से हमारे यहाँ सेवल एयरपोर्ट बन के तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में

सचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीएटी 2026 कल हुई संपन्न। तीन दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

वीवीएस भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। धोखेबाज फिल्म का गाना, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम बुलंदी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आशा फिल्म से गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जलते अंगारों को छेड़ गई, रुक्मन के तारों को छेड़ गई, जलते अंगारों को छेड़ गई, रुक्मन के

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
4: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
2: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
3: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर

0: आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
0: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष

0: 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को

0: ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next Uran in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Uran scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: Uran Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ऑल्सो सेड दैट द लॉन्च ऑफ द विकसित उड़ान स्कीम विल मार्क द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियाज रीजनल कनेक्टिविटी जर्नी। मिस्टर नायडू सेड द स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर विद एन आउटले ऑफ ओवर 28,840 करोड़ रुपीज will facilitate the development of over 100 new aerodromes and 200 helipads, bringing the dream of affordable air travel closer to millions and connecting the aspirations of a rising India.
4: It is the vision of Prime Minister Narendra Modi that wherever there is expansion of civil aviation, it should benefit not just passengers but also the economy of the entire city, businesses, students and every sector as well as citizens. We can see the effect across the country today.
2: Later in the day, Prime Minister Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test or OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
3: भारत जो ठान लेता है, वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को

0: लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
1: Mr. Modi also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
0: यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी. आप

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी सुनने वालों का। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं चित्रलोक, आपका दोस्त राजेश आप सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम की शुरुआत में कार्तिक का गाया हुआ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का गाना। नीलेश मिश्रा है गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं निकिता गांधी की आवाज में बागेश्वरी फिल्म से। गीतकार और संगीतकार हैं रेने बंडाली और तनिष्क बागची। बोले डू यू लव मी।

0: सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए नकश अजीज और मधुबंती बाक्षी की आवाजों में लव्यापा फिल्म का गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए राघव राजा हसन की आवाजों में वेल्डन अब्बा फिल्म का गाना। अशोक मिश्रा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

सक्सेना और साथियों की आवाजों में सब कुशल मंगल। इस फिल्म का गाना गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।

बाहुबली वार किया, जीना दुश्वार किया, तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया, है ना, है ना। प्रेम के थाने में मैंने दिल का FIR किया, तूने मुझे प्यार किया, मैंने तुझे प्यार किया, है ना, है ना।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी। इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किडबैक।
2: RBI कहता है,
1: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा है इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना, आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

पर क्यूट पड़ी लगे आए हाय।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूं आपसे, लेट्स गो ना ऑन अ डांस फ्लोर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के कुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के कुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्ने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं। लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला पहला

0: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
1: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1900

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसकी अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मेरा एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं,

0: टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
2: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
1: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव
2: जी।
1: आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
2: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ।
1: हाँ।
2: हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
1: है। बिल्कुल।
2: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी।
1: हाँ।
2: वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी।
1: हाँ।
2: तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी।
1: हाँ।
2: तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
1: बिल्कुल।
2: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
1: हाँ।
2: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है
1: क्योंकि
2: दोनों गाने वही थे।
1: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
2: नहीं,
1: थी कि चुनरिया पर ही आपको
2: नहीं,
1: गीत लिखा?
2: मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
1: आपस का
2: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर
1: टाइप्ड
0: रहे हैं,
1: नहीं हुए आप?
0: टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है ना।
1: हाँ
0: और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक्की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी,
1: अच्छा
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग,
1: हाँ
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बैल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो
1: सर,
0: जगह ही रहता था
1: अरे
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: वो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था, इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने
0: जी
1: कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए।
0: जी
1: इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म

0: की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा।
0: ये सारी फाइलें जो है ना, वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का
1: जी
0: अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी जी
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूं। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया। तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, क्या रे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। तो करना मैंने कब मना किया है? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं, उसमें
1: हाँ
0: क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ तीन पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे क्या रे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा।
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत।
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना,
1: जी
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ, वो मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा जी
0: मैं बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं, ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा धरती की
0: तो
1: हलचल।
0: हलचल, और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली बार
1: शाह।
0: मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था।

0: लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे लिए लकी है। मेरा ठीक है,
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना

0: नहीं, वो मेरे लिए लकी है मैं, ठीक है,
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना, DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को, वो ही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और
0: जी
1: कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये
0: जी
1: बातें, ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। और ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए,
1: हाँ हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे।
1: बिल्कुल
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के
1: बिल्कुल
0: कितने हैं।
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता, क्योंकि
1: एकदम
0: उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: भाई, ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है, वो कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ वो चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: मैं आ जाऊंगा,
0: दूंगा,
1: वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी

0: मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा, थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे। और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: उसमें कोई
1: बहुत
0: बात
1: बड़ी बात
0: नहीं।
1: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
0: जी
1: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
0: नहीं नहीं
1: आपने, और
0: नहीं नहीं
1: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है अचानक गीत आप?
2: देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूँ जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है, हम
1: अच्छा।
3: प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ,
1: अच्छा,
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहां की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहां बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहां से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, पलान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
2: तो ये कब शुरुआत किया आपने?
3: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
2: अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
3: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
2: जी,
3: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से एक गाँव गाँव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
2: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
3: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
2: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे, वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
3: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
2: अच्छा।
3: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
2: अच्छा।
3: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
2: अच्छा।
3: और उस पे हमने जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर सुनोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह। लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने वहाँ के जो

0: भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अब भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है, शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाए, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है, तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है, तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक

0: नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गाँव में जाता हूँ क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं। गाँव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गाँव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गाँव बनते हैं।
1: अपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गाँव था और उसमें गाँव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़कर भाग लिया और गांव-गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायती या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहाँ पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगा

0: लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन
1: का
0: रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश हो के देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों प्रयोग करते थे, और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है, मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव पर, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है, जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूँ अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती है, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहाँ से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा

0: ज्यादा पहले से ही जागरूक करता मैं, जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से, जैसे पहले गांव थे तितलियां मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए? जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं, और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता, गांववासी को जोड़ा जाता है, अब इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए, और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना, और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, तीन गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना कुछ
1: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपने जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
1: जी।
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा है, इतने सब ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
1: जी, और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ, मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का।
0: वाह,
1: एक ऐसा गीत

गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया।
1: जी
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि, जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है,
1: जी जी
0: रहे
1: जी
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है, तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का, जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही
1: और
0: बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित

0: इतिहास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास
1: आहा
0: है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है। आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई, और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोतो, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पाँव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो

खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना की हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती। जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे

व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूं, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार,
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो

0: जिम्मेदार होता है, वो उसका रचयिता होता है असल में, फिल्मकार।
1: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
0: शायद
1: की है।
0: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता
1: जी
0: था।
1: हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस। जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
1: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी।

0: मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
1: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की,
0: जी
1: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
0: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
1: जी
0: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में दून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी
1: जी
0: फिल्म के
1: जी
0: लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था।
1: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था, और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
0: जी, 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
1: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की, और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई, और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है।
0: वही जो लता जी के स्वर में है।
1: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
0: चलिए।

0: हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2,000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोताओं, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की,

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सर करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल

उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल
0: जी
1: की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे। और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म

0: मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था, बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं, जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं, क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आम तौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं उस तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है
0: जी।
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा,
0: कामयाब होंगे
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं, तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले आना।
1: हाँ, बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ, यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया।
0: अच्छा।
1: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा।
1: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। और मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा था क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, लाइव रिकॉर्डिंग में

0: बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और
1: जिक्र करते
0: जाकर हाँ कि
1: हैं।
0: अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अनु मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी
1: जी
0: भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
1: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया,
0: नहीं
1: तो कैसे मिला था ये
0: इसका तो
1: मौका?
0: कमाल है। आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और आगे भी रहूंगा।
1: रहेंगे।
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
1: जी जी
0: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशिल लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है
1: अच्छा
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन। तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कहिए या रफी साहब की चाहत थी, क्या थी कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं
1: जी
0: ना, प्रिट नेम है बट
1: अच्छा
0: मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत
1: बहुत
0: याद
1: याद
0: आया, मैं
1: आया।
0: इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है, तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि
1: जी
0: रोज का काम है
1: जी
0: उनका,
1: जी
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एकदम तो सन्नाटा छा गया। वो न फनकार तुझसा तेरे बाद आया।

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता था जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व। गाना जब बनता था ना, जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया हो? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को
0: जी,
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी,
1: और लता जी से लेकर सारिका

0: कपूर तक के साथ गाया।
1: जी
0: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
1: क्या
0: पूरा
1: बात
0: हो गया
1: है।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था।
0: मैं एक दफा गया गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एस डी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
1: जी,
0: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए नए लड़ जाए हैं ये सब,
1: जी,
0: बिहार
1: जी,
0: का सिचुएशन देखकर
1: जी,
0: पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला। देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
1: अच्छा,
0: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर। और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्म एल्बम्स के बारे में
1: एक
0: बताइए।
1: बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था। वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा। इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी,
1: नात मनकबत जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा सारा टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है।

0: और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
1: अच्छा
0: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
1: जी,
0: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो उसमें 4 सिंगर है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था
1: जी।
0: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2-2.5 हजार है, और 4 हजार के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
1: जी जी,
0: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10 हजार के ऊपर गाने हैं मेरे।
1: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
0: 17 या 18।
1: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
0: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब की रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस
1: वापस
0: आएंगे विविधा का
1: आएंगे।
0: अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को आपके मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए

0: एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं।

कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों, आशाओं, चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत, जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर। अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का, अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है, तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है। जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है। जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए, और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था। सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े होकर, पड़े रहकर, या सोकर तारे देखना, या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना। तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है, या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर। असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है, तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं। लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है, और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं। लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में, बता देंगे तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वहीं लेकिन हमारी साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते न सपने न लोग न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो

मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी वैद्य कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है।

0: नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाह जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे एक कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो, ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी। दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में।
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत, और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, कि हमारे जीवन में हर चीज मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं है, या जिन चीजों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है, या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफर जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका पर, मार्केट सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो जरूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिल रहा है, मिला है, जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्ना डे, आशा भोसले, बतेश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया। अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वही हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुश नसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना, ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं। और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मॉनसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है। इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायरलेस होना चाहिए।

और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं मारिक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा। तो ये इनका कहना है। साथी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अदद नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया। ऐसा

उन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना, टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही हमारे एक और साथी ने। इतवार का क्या प्लान है, ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बताइए। और हमें जरूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

0: जगत।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज इतवार है फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी उनके फरमाइश की, एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी का देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रहे हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, आज ऐसा लगता है कि 4 हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं क्योंकि 4 हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक लिंटोन की आवाज में आपने ये गीत सुना। इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं। कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपने उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती है और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि एक किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं।

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

बात सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है, तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है, इसकी भरपाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सच है कि तरक्की जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जल डमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार

0: आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
3: ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल

0: यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने

0: स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है।

0: विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिले। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह।

जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, हसरत जयपुरी की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार, हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: te arregui.
1: Mancharregui.
0: Mancharregui.
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी के पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचनगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो बात।

10 नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ही बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सके। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत इंदिवर के बोल पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

हमें आई है पारण सावंकी से गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की, और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचित वायात, सरवद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओ, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझमें भी थैले के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
2: कौन रानी हीरावती?
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ तू चुप क्यों है?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
3: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
3: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आलीपुरी का हम चले यहाँ।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवाकर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारी किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है।

0: कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो, कान में सुनिए। मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा उसमें लेके तुम उसके अंदर।
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहाँ जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जैसे इनको सब समझा दो।
0: अभी समझा देता हूँ महाराज, आप वहाँ पहुँचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पाँव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: मर गया महाराज, मर गया। मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल परी का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
5: अरे माफी कर लो, मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
5: मेरा तो अन्न करता जा रहा है, सारे शरीर में पहलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
5: महाराज, मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाते मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
6: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहाँ ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहाँ ले जाओ।
6: देव की कैसी आज्ञा।
5: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो वो क्षमा की।
3: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
6: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी संगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
6: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमदवन में पहुंचा देना, समझे?
6: जो

0: कौन? हाजी गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकुला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल

0: महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और
1: ठीक है मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने एक खेल कैसे खेला?
0: ये मैं फिर बताऊंगा बकलवल का। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
2: जो आप क्या

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है।
0: तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
0: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ। क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक सा नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
2: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
1: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
0: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रो उठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रो उठ गई थी? स्वामी की जय हो।
4: प्रिय,
5: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
4: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है हमारी।
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न में भी कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
4: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
6: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ आ उसे भगाने
0: चल चले।
6: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
7: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
7: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
7: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही चक्कर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: बैठे बैठे सो रही हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हा?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ। ये
4: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
5: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
6: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
5: कहाँ है सांप?
6: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
7: महाराज रुकिए।
1: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
5: देवी इरावती,
7: सखी बकुलावलिका, ये किसान है।
1: बकुलावलिका, तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओह, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर के सामने आके रहा।
8: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
7: सखी बकुलावलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
1: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
4: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
1: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
9: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के पूजने का उत्सव मनाएंगी।
10: प्रासाद वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीरसेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र मानवसेन मुक्त हो गए। मानवसेन ने हेर स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार

0: जय हो। विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव।
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की सात पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आके देव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो। राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी है।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
2: हाँ वही है।
4: प्रणाम भगवती।
2: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
2: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
2: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
5: ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक थे।
2: भैया आप भी तो?
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
5: अरे शेर क्या हुआ? क्या सब लोग एक रुक क्यों गए?
6: जान जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
5: वही हुआ ना जिसका भय था।
2: ठाकुर ने खेल दिया है।
7: चाहिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
5: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लुहान होकर इधर आ रहे हैं। डाकू ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े। हम असहाय रह गए।

0: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गईं। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
1: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
2: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
0: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
2: वो क्या?
0: उसने कहा था, इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही, तो मैं चुप्पी साधे रही। और
3: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
1: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ, मंत्री परिषद को हमारी यह इच्छा बता दो।
3: जो महाराज की इच्छा।
4: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी राज्य का शासक बना दिया है।
5: उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
3: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
1: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
4: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज, पढ़िए ना ये पत्र।
1: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
4: फिर क्या हुआ?
1: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
0: महाराज, महारानी, पुत्र के विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
4: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
1: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
4: जय सेन।
3: आज्ञा देवी।
4: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ। फिर कोई विघ्न न डाले।
3: देवी की कैसी आज्ञा।
4: मालविका, इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे, आप लज्जा क्यों रहे हैं? मालविका को ग्रहण कीजिए।
6: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लज्जा ही करते हैं।
7: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे

0: सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहाँ चलते हैं जहाँ अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहाँ तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख

0: रहा है, वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता।
1: ओके,
0: तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इट सेल्फ एक बड़ी बात थी। और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर।
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

0: अब आता है उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूं, देखता हूं, दोस्तों को लेके जाता हूं इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि
0: पड़ेगी।
1: एक बार फिर से वो जनाना
0: हाँ।
1: रोल

0: बनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में, तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी आज तक उसकी रीलें चलती हैं, और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं जो
1: 80s वाला दौर।
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है। वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुंदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं, तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट। कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे, और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो, तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल।
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक

0: एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
1: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
0: सिर्फ सुना है,
1: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
0: की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
1: करेक्ट,
0: वहां
1: करेक्ट।
0: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है, तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े। लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
1: करेक्ट,
0: आखिरी रास्ता फिल्म में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
1: बहुत ही बहुत ही, और उस समय
0: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
1: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
0: ऑफ कोर्स,
1: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी, और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट? सब लोगों को ऐसा जा रहे हो, आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है, ओके, ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
0: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
1: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा, वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
0: अपना
1: है,
0: अपना फर्ज निभाओ
1: उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
0: बिल्कुल
1: प्रेशर तो बनता है, इज व्हाट आई थिंक। लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म के बाद। और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
0: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
1: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि

0: कि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वॉज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा

0: इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
1: बिल्कुल. सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से.
1: अच्छा.
0: हाँ. और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
1: अच्छा.
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो. वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे. और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना. बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है.
1: ओके.
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है. और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी. और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की. कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे. पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है. आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है या आप डिसाइड करो.
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं. बिल्कुल नहीं.
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे.
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही. बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है. और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे. तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था. तो वो उन्हें देखना था इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए. औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है. तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है. लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़ के. 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं. तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था. और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया. खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे. और उस समय

0: हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए,
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन, पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में,
1: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया वो, इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन,
1: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया,
0: बिंदु जी के साथ सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
1: वो यूट्यूब पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई,

0: थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: हुकूमत सड़क
0: अर्धसत्य
1: है
0: दिखाऊंगी,
1: ना।
0: ये
1: बिल्कुल,
0: सारी फिल्में
1: इश्क का
0: दिखाऊंगी।
1: रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत
1: वो
0: ही
1: तो
0: अलग,
1: क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंद्र कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है। ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
1: बिल्कुल,
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये
0: ओवर
1: कुछ
0: द
1: अलग
0: टॉप
1: था।
0: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी,
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
1: अच्छा,
0: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी
1: हाँ,
0: काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
0: प्लीज।
1: Hey, oh!

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकतनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: तब और तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
0: मिला
1: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें

0: फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तुपुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
1: राइट,
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
1: जी।
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवान घेवान कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोघी मिली, वास्तुपुरुष मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी, तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था।
1: बिल्कुल,
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है
1: जी।
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: एफएम के 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए, हर शुक्रवार शाम 7:45 पर।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आज आपका दोस्त और होस्ट आशिक गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें होगी ढेर सारी चर्चा और साथ ही करवाएंगे आपका मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ, और साथ ही देंगे आपको कुछ रोचक जानकारियां। तो बने रहिए मेरे साथ कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, कहते हैं प्रकृति हमें जीवन देती है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। साथियों, इसकी शुरुआत किसी बड़े काम से नहीं बल्कि एक छोटे से पौधे से हो सकती है। एक पौधा केवल हरियाली नहीं बढ़ाता बल्कि स्वच्छ हवा, ठंडी छाया और बेहतर भविष्य की उम्मीद देता है। दोस्तों, आज की यूथ केवल अपने करियर और सपनों तक सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी भी समझ रही है। एक छोटा सा पौधा केवल पेड़ बनने की शुरुआत नहीं होता बल्कि यह स्वच्छ हवा, ठंडी छाया, पक्षियों का घर और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बनता है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम सिर्फ मिट्टी में बीज नहीं डालते बल्कि प्रकृति के साथ अपना रिश्ता भी मजबूत करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी कम करते हैं, वर्षा के संतुलन में मदद करते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इसलिए एक पौधा लगाना धरती के लिए सबसे सुंदर उपहार माना जाता है। दोस्तों, आज का यूथ पर्यावरण संरक्षण की इस जिम्मेदारी को समझ रहा है। देश भर में पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं जिनमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित कल की नींव रखते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल पौधा लगाना ही काफी नहीं है। उनकी नियमित देखभाल करना, समय पर पानी देना और उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि हर व्यक्ति साल में सिर्फ एक पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी निभाए तो हमारा देश और अधिक हरा भरा बन जाएगा। आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि एक युवा एक पौधा की सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि एक पौधा सिर्फ पेड़ नहीं बनता बल्कि नई उम्मीद, नई सोच और बेहतर भविष्य का संदेश देता है। और दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा, और अब चर्चा तो आगे और विषय पर होगी, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम में पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गोलमाल 3 से। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी सुना आपने है गीत फिल्म गोलमाल 3 से, आवाज थी नीरज श्रीधर व साथियों की। दोस्तों युवा हर देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जब युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और अवसर मिलते हैं तो वे अपने साथ साथ देश की तरक्की में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी सोच के साथ युवाओं के लिए नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, खेल, डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता, नवाचार, नशा मुक्ति और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ना है। इस पहल के तहत युवाओं को नए कौशल सीखने, सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर खोजने तथा समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही खेल, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि युवा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। दोस्तों आज का समय नई तकनीक और नए अवसरों का है। ऐसे समय में हर युवा को अपनी प्रतिभा पहचान कर लगातार सीखते रहना चाहिए। मेहनत, अनुशासन और पॉजिटिव सोच के

0: साथ आगे बढ़कर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा युवाओं का संबल नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के विषय में। और दोस्तों, कार्यक्रम को यहीं रोकते हुए चलते हैं ब्रेक की ओर, और ब्रेक के बाद करेंगे आगे के विषय पर चर्चा। तो आइए चलते हैं ब्रेक की ओर।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
5: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
6: लग जागने के फिर,
4: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन एक साथ गूंजती है तो बनता है।

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: साथियों ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम युववाणी में। साथियों कहते हैं दौड़ सिर्फ पैरों से नहीं जीती जाती बल्कि हौसले आत्मविश्वास और लगातार मेहनत से जीती जाती है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लेता है तो हर चुनौती उसके लिए सफलता की नई सीढ़ी बन जाती है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे धावक की जिनकी मेहनत और समर्पण यूथ्स के लिए प्रेरणा का संदेश देती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लेमोंट मार्शल की। और साथियों किसी भी खिलाड़ी की पहचान केवल उसकी गति से नहीं बल्कि उसके अनुशासन नियमित अभ्यास और कभी हार न मानने वाले जज्बे से होती है। यही गुण एक साधारण खिलाड़ी को असाधारण बनाते हैं। लेमोंट मार्शल की यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए धैर्य मेहनत और पॉजिटिव सोच ज्यादा जरूरी है। खेल हमें केवल पदक जीतना नहीं सिखाते बल्कि समय का सम्मान करना टीम भावना सेल्फ कॉन्फिडेंस और मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना सिखाते हैं। यही गुण जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफल बनने में मदद करते हैं। और साथियों अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो आज से ही उसकी ओर पहला कदम बढ़ाइए। रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए लगातार मेहनत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। याद रखें मंजिल उसी को मिलती है जो रुकता नहीं बल्कि हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। तो दोस्तों आइए इसी क्रम में सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी से। आवाज है अरमान मलिक की।

0: दोस्तों अभी सुना आपने है गीत फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी से, आवाज थी अरमान मलिक की। आइए दोस्तों चलते हैं ब्रेक की ओर, ब्रेक के बाद करेंगे आगे के विषय पर चर्चा।
1: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ?
2: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: सुनिए सुनिए सुनिए, 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।

दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों बारिश की रिमझिम फुहारें, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली हरियाली मानसून को साल का सबसे खूबसूरत मौसम बना देती है। और ऐसे में परिवार या दोस्तों के साथ रोड ट्रिप, वीकेंड गेटवे या किसी प्राकृतिक स्थान की सैर का मन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, एक सफल यात्रा वही होती है जो आनंद के साथ साथ

पूरी तरह सुरक्षित भी हो। इसलिए आज बात करते हैं मानसून यात्रा की सुरक्षित योजना की। दोस्तों, मानसून में यात्रा पर निकलने से पहले सबसे पहले वेदर जरूर देख लें। यदि मौसम विभाग ने भारी बारिश, बाढ़ या भूस्खलन की चेतावनी जारी की हो तो यात्रा कुछ समय के लिए टाल लेना ही बेहतर होता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पहले से तय कर लें और जहां तक संभव हो वैकल्पिक मार्ग की जानकारी भी साथ रखें। अगर आप कार या बाइक से सफर कर रहे हैं तो ब्रेक, टायर, हेडलाइट, इंडिकेटर और वाइपर की अच्छी तरह जांच कर लें। अपने साथ रेनकोट, छाता, टॉर्च, पावर बैंक, पीने का साफ पानी, हल्का भोजन और जरूरी दवाइयां अवश्य रखें और मोबाइल पूरी तरह चार्ज रखें। अपने परिवार के किसी सदस्य को यात्रा की जानकारी जरूर दें। बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, इसलिए तेज रफ्तार से बचें और सुरक्षित दूरी बनाकर वाहन चलाएं। पानी से भरी सड़क देखकर बिना उसकी गहराई जाने उसे पार करने की कोशिश ना करें। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय ढलानों, नदी नालों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें। यदि मौसम अचानक खराब हो जाए तो जल्दबाजी ना करें और किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। दोस्तों, यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट या अन्य कचरा इधर उधर ना फेंकें। प्रकृति हमें सुंदर नजारे और ताजी हवा देती है, इसलिए उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों के निर्देशों और प्रशासन की सलाह का पालन करें, क्योंकि उनकी जानकारी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, मानसून का आनंद खुलकर लीजिए, नई जगहों को देखिए, यादगार पल बनाइए, लेकिन हर कदम पर सेफ्टी फर्स्ट को अपनी आदत बनाइए। थोड़ी सी सावधानी आपकी यात्रा को सुरक्षित, सुखद और तनाव मुक्त बना सकती है। मुस्कुराइए, सुरक्षित रहिए और जिम्मेदार यात्री बनकर दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश कीजिए। और दोस्तों, इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब वक्त हो गया अगले मधुर गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। आवाज है श्रेया घोषाल व साथियों की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी सुना आपने है गीत फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। दोस्तों बारिश की फुहारें हमें सफर का आनंद लेना सिखाती हैं, तो जिंदगी का सफर हमें मेहनत और धैर्य का महत्व समझाता है। इसी बात के साथ अब समय है आज की सीख का। जरा सोचिए, अगर सफलता पाने का कोई शॉर्टकट होता तो मेहनत करने वालों की पहचान ही क्या होती। सच तो यह है कि जीवन में मिलने वाली हर बड़ी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, लगातार प्रयास और धैर्य की ताकत छिपी होती है। दोस्तों असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखना चाहिए। हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जल्दबाजी ना करें, बल्कि अपने प्रयासों पर भरोसा रखें। समय के साथ आपकी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी। तो आज की सीख यही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत को अपनी आदत बनाइए, धैर्य को अपनी ताकत और आत्मविश्वास को अपना साथी। यकीन मानिए, सच्ची लगन और ईमानदार कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी सकारात्मक संदेश के साथ बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहिए। और दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ी अब हमें और इजाजत नहीं दे रही है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम? आपके विचार और सुझाव पसंदीदा हिस्से हमें जरूर भेजिए आकाशवाणी के ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आपके सुझाव ही हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बनाते हैं। हम इंतजार करेंगे आपके संदेशों का। तो इसी के साथ आपके अपने साथी आशिक गौतम को दीजिए इजाजत कार्यक्रम युववाणी से। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी FM के 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। लीजिए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं महेंद्र कपूर, अनुराधा पोडवाल, हरिहरन, हरिओम शरण, प्रीति सागर, उदित नारायण के गाए भजन।

0: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
1: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
2: लग जा गले के फिर।
0: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो। आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन एक साथ गूंजती है।

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।

भजन संध्या कार्यक्रम में आज आपने महेंद्र कपूर, अनुराधा पौडवाल, हरिहरन, हरिओम शरण, प्रीति सागर,

और उदित नारायण के गाए भजन सुने। इसके साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम के 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम चौपाल सुनवे बारे हमारे सब किसान भैया बहनन को राकेश भैया की नमस्कार। और देखो भैया, अपन को खरीफ में देखो जो भी बीज अपन को बुआई करने हैं तो उन बीजन को पहले तो अपन को शोधन करने। और देखो ऐसा नहीं कि अपन ज़्यादा बारिश वाय बीज बो दें या कम बारिश वाय बीज बो दें, थोड़ो थोड़ो सब अपन खो में बोने कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी अपनी फसल हो जाए, और अगर कम बारिश हुई तो जो कम बारिश वाय अपन ने बीज बोए हैं तो उनसे अपन को लाभ मिल जाए। कहे के इस बार जैसे कि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि वर्षा की कछु अनिश्चितता है, लेकिन कछु कहीं नहीं जा सकत है। और जब हमारे किसान भैया खेती किसानी करते हैं तो देखो जो अपन फसलें बहुत हैं, जैसे कि अपने बुंदेलखंड में खासतौर पे झांसी और झांसी के आसपास, झांसी है, ललितपुर है, इनमें सबसे ज़्यादा हमारे किसान भैया मूंगफली बोन लगे हैं। और मूंगफली की फसल के लाने पानी की आवश्यकता होती है, अपन जानत हो। तो अब देखो मूंगफली तो बह ही रहे, उसके संगे संगे हमारे किसान भैया जो जागरूक किसान भैया हैं पे जानत हैं कि अगर कोनो आपदा आ गई तो हमारी जो रोजी रोज के जो हमारे खर्चा हैं उन बेप्रभावित ना हुए, हमारे बच्चन की जो फीस है या जो अपन को मोबाइल को रिचार्ज कराने ई के लाने जो पैसन की जरूरत पड़ती है तो वो अपनों काम लगो रहे, तो उसके लाने हमारे किसान भैया सब्जी भाजी भी लगा लेते हैं। तो जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनमें इस समय पे जो नर्सरी प्रबंधन करने हैं तो उके लाने हम अपन को बता दें कि देखो जितने भी अपन जो सब्जी की फसलन की नर्सरी अपन लगा रहे हैं तो कम से कम 10-15 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, जो कि साधारण जमीन है, जमीन से 10-15 मीटर सेंटीमीटर ऊंचाई पे अपन को क्यारी बनाने हैं। और देखो वे अच्छी जुताई करके और बढ़िया भरभरो बना लेने, और उनमें अपन को कोनू रासायनिक खाद नहीं मिलाने हैं, उनमें सड़ी गोबर की खाद मिला दें या फिर बर्मी कंपोस्ट जिया के अपन कैचुआ की खाद कहते हैं, वा मिला दें। और देखो जब अपन क्यारी बनाऊ थे तो उके लाने कछु वातावरण को भी ध्यान रखने पड़ते हैं कि ऐसी जगह अपन को क्यारी बनाने जितने के पूरे दिन धूप बनी रहे और हवा को आवागमन बनो रहे। अगर अपन छाँव में क्यारी बना दें तो छाँव में जो पौधे हैं वे बढ़ें तो खूब, लेकिन वे कमज़ोर हो जाएं और उतनों अपन को उत्पादन भी नहीं दें। तो जैसे अपन को जो धूप है, धूप वाले क्षेत्र में अपन को क्यारी बनाने हैं। और हाँ, कछु क्यारियन में बीमारियाँ भी लगत हैं, रोग भी लगत हैं, तो फंगस के लाने, फंगस अगर लग रहा हो तो उसके बचाव के लाने ट्राइकोडर्मा जो है अपनों ये कहें कि ट्राइकोडर्मा विरडी 10-15 ग्राम अपन को लेने हैं। जो और अगर जो नहीं मिले तो नीम की खली अगर मिल जाए तो बा ले सकते हैं, और बा को अपन खोई में मिला देने हैं। और देखो एक बात को और ध्यान रखने के जो क्यारियां हैं, क्यारियन की चौड़ाई लगभग 1 मीटर रखने ताकि अपन दो ही तरफ से उनमें निदाई गुड़ाई कर सकें। अगर ज़्यादा चौड़ी अपन ने बना दें तो उनमें अंदर घुसने पर निदाई

0: उड़ाई किला ने, तो अपनी पौध बेकार हुई है। काहे के वो तो अपन क्यारी तैयार नर्सरी तैयार कर रहे, तो अपन खुद एक मीटर चौड़ी बनाने और लंबाई अपन अपने हिसाब से बना सकते हैं। 3 से 5 मीटर लंबी अपन को क्यारी रखने हैं, और हम अपन को बता ही चुके कि जमीन से लगभग 10-15 सेंटीमीटर ऊंचाई पे अपन को बनाने हैं। और जब भी अपन उमें जो भी सब्जी की अपन सब्जी के बीज बो रहे हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखने हैं। और हाँ, बीज अगर अपन को बोने हैं तो लगभग 0.5 सेंटीमीटर गहराई पे, मैंने ज़्यादा गहराई पे अगर अपन ने बे दो तो कहो ये कि वो जमे नहीं। और हाँ, जैसे ही अपन बो दें तो सूखी घास या पुआल वगैरह से ऊखो ढक दें, यानी कि मल्चिंग कर दें, ताकि उनमें नमी बनी रहे और अच्छी तरीक़ा से जो बीज हैं वे अंकुरित हो जाएं। तो इन छोटी छोटी बातों को हमारे किसान भाई इनको ध्यान रखने हैं। और देखो, जैसो कि आज को दिना है, आज है रविवार, और रविवार के दिना हम अपन को एक खास कार्यक्रम लेके आउत हैं, ताकि आपकी खेती किसानी में और ज़्यादा आप जो वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती कर सकें, उमें का अपन सुधार कर सकते हैं, का अपन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कि ताकि अपन को अलग से लाभ मिल जाए। तो अपन समझ गए ही हो, RLB CAU रेडियो कृषि पाठशाला जो कार्यक्रम अपन सुनत हो हर रविवार को, और आज अपन सुन रहे जाको भाग 9। और आज को जो विषय है, सही पेड़ सही लाभ, यानी कि वानिकी वृक्षों का चयन और वैज्ञानिक प्रबंधन। मतलब के अगर अपने पास जमीन है, अपन खेती किसानी कर रहे, अपन फसलें तो ले ही रहे, लेकिन जो वानिकी वृक्ष हैं उनको लगा के अपन अलग से भी अतिरिक्त आय ले सकते हैं। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MJ डोबरियाल और ई कार्यक्रम के प्रायोजक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। तो ज़्यादा देर ना करत भय, सुने जो रेडियो कृषि पाठशाला को भाग 9।
1: खेत से खलिहान तक, बीजों के चयन से लेकर आधुनिक तकनीक के उपयोग तक, कृषकों के समग्र विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु करोड़ों किसानों के हित में प्रयासरत रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी लेकर आया है कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि की वैज्ञानिक जानकारी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से आकाशवाणी झांसी द्वारा प्रसारित RLB CAU रेडियो कृषि पाठशाला।
2: किसान भाइयों नमस्कार, RLB CAU रेडियो कृषि पाठशाला की कड़ी 9 में अपन का बहुत बहुत स्वागत है।
3: आज अपन देख रहे हैं कि खेती के मायने बदल रहे और बदलते मौसम, गिरत भाव भूजल स्तर और भैया जा बढ़ रही लागत, तो इके बीच में अपन परंपरागत खेती के संगे एक ऐसो जरिया खोजबो जरूरी है जो संकट के समय किसान भैयन को बड़ो सहारो बन सके। इकेला ने देखो, हम अपन से बात कर रहे थे कृषि वानगी की, जैसो की हमारे बुजुर्ग कह गए कि खेती तो अपन कर ही रहे, आज और कल के लाने खेती करी जाते हैं, और भैया पेड़ जो होते हैं वो पूरी पीढ़ी को खुशहाल बनावे के लाने देखो अपन लगाते हैं। अकेले भैया अपन का कर रहे के बिना सोचे समझे, या भैया सही जानकारी ना मिल पावे से अपन कोनो भी पेड़ अपनी खेत की मेड़न पे लगा देते हैं, जिसे भैया ना तो अपन को जो पेड़ लगा रहे उकी जो लकड़ी होते उके सही दाम नहीं मिल पाऊ, और दाम के संगे संगे जो अपन अपनी फसलें लेते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते। तो आज अपन ऐसे ही विशेष बातचीत करत हैंगे, सही पेड़ सही लाभ, वानिकी वृक्षों का चयन और प्रबंधन। भैया आज अपन के बीच में है डॉक्टर जो कि विशेषज्ञ हैं, MK डोबरियाल जो प्राध्यापक हैं कृषि वानगी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। तो डॉक्टर साहब, अपन को हमारी तरफ से और हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से और सभी श्रोता भैया की ओर से बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनमोहन डोबरियाल प्राध्यापक वानिकी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में हूँ, और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो डॉक्टर साहब, जैसो कि अपन आज बात करें कृषि वानिकी की, वृक्षों को जैसो चयन की अपन बात करें, सही पेड़ सही लाभ, वानिकी वृक्षों का चयन और प्रबंधन, तो डॉक्टर साहब शुरुआत में हम अपन से पूछबो चाहें कि कोनो भी किसान जो हमारे किसान भैया रहे हैं वे पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ जब अपन खेत में लगाते हैं

0: तो उसकी शुरुआत मैं किसान भैया रहे कैसे करें। एक किसान अपनी खेत की मिट्टी और उतरे की जलवायु के हिसाब से सही पीड़न को चुनाव कैसे कर सकते हैं, जाके बारे में हमारे किसान भैया को बताओ डॉक्टर साहब।
1: आपने सही क्वेश्चन पूछा कि जो है उसके खेत और जलवायु के हिसाब से चयन कैसे करें, क्योंकि हर पौधा हर जगह उग तो जाता है लेकिन उपयुक्त तो कौन सा उसके लिए रहेगा ये देखना हमें बहुत जरूरी है। तो जैसे हम बाकी फसलों के लिए भूमि का चयन या मृदा का चयन करते हैं, वैसे इसमें भी जो है अलग अलग जलवायु में अलग अलग पौधे लगाए जाते हैं। हमारा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पे शुष्क जलवायु का ज्यादा है और जल स्तर भी नीचे है, पथरीली जमीन है, तो ऐसे में हमें थोड़ा हार्डी प्लांट्स लगाने पड़ते हैं
0: जी।
1: तो अभी जो चयन हम करें पौधे की, तो हमारी जमीन में अलग अलग प्रकार के हो सकती है, तो अगर हमारी गहराई है जमीन में, अच्छी मिट्टी है, तो हम वहाँ पे जो जल्दी बढ़ने वाली उत्पादक फसलें मतलब पेड़ आपका कृषि वानिकी में लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपकी इस तरह की भूमि है जिसकी उर्वरा शक्ति कम है, पथरीली है, वहाँ पे आप जो है कीकर जैसे पौधे जैसे अकेशियास के हैं, कम जो हार्ड मीन्स जो ज्यादा इसको रेसिस्ट कर सकते हैं वैसे पौधों का चयन करें, तो हमारी जो उपयोगिता और भूमि और जलवायु के हिसाब से हमें उसको सुनिश्चित करना होगा, तभी हम अच्छा उत्पादन पा सकते हैं और हमें लागत भी मिल सकती है।
0: सही बात अपन ने बताई। तो वैसे डॉक्टर साहब देखा थे ज्यादातर हमारे किसान भैया ने क्या करा थे कि पारंपरिक रूप से जो खेती होते उनमें शीशम सागौन या यूकेलिप्टस के पेड़ ही लगा उठेंगे, इसे ज्यादा हमारे किसान भैया ने पेड़ की नहीं देखा था ना शुरुआत करते। तो इनके अतिरिक्त ऐसे कौन नए या ऐसे वृक्ष हुए जो कम समय में किसान भैया को अच्छा फायदा दे सके और जिन्हें अपन कृषि वानगी में भी शामिल कर सके, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताओ जो हमारे किसान भैया ने लगा सके।
1: जैसे आपने बताया कि जो है पारंपरिक जो ऐसे शीशम और सागौन है, यूकेलिप्टस कुछ कुछ जगह है लेकिन यूकेलिप्टस में कई सारे भ्रांतियां हैं, इसलिए यूकेलिप्टस जहां कुछ नहीं होता वहां लगाना चाहिए, उपजाऊ जमीन में बहुत ज्यादा नहीं उसको प्रिफर करते हैं हम लोग, हालांकि ये बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल वुड है, लेकिन सागौन और शीशम अभी भी एक अच्छा मीन्स आपके पास विकल्प है जिसको हम खेत पे अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेन पे क्योंकि सागौन के लिए 20-25 साल, शीशम के लिए भी करीबन 21 साल के लिए आपको इमारती लकड़ी के लिए ये है
0: जी।
1: तो अगर आप लंबे समय तक लगाना चाहें तो उसको लगाएं, लेकिन जो नई फसलें आ रही हैं, नई जो पेड़ उद्योगों को देखते हुए स्पेशली जो वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए जैसे पेपर एंड पल्प के लिए है, तो कई सारे जो नए जो है कदम है, मीलिया है, जो ल्यूसिना है, ये सब जो है बबूल, ये सब उसमें आजकल लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री में भी जो है मीलिया डूबिया आजकल एक नया जो है जिसको मालाबार नीम बोलते हैं, वो काफी प्रचलित है और वो भारत का ही पेड़ है। इसी तरह आपका जो है कदम है, मलाइना अरबोरिया घमार जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक महानीम है आइलेंथस स्पीसीज जो है महारुख जिसको बोलते हैं, ये ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो जमीन जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे हम बहुत सारे अकेशिया प्रजाति के पौधे हैं जो वृक्ष जो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। कुछ किसान भाई आजकल चंदन और रक्त चंदन भी लगा रहे हैं जो हाई वैल्यू ट्री क्रॉप्स बोलते हैं जिनको
0: जी,
1: हालांकि अभी उनपे बहुत ट्राई होना जरूरी है। ऐसे मोहगनी भी जो है एक यहाँ पे अभी जहाँ पे थोड़ा जमीन अच्छी है वहां पे एक अच्छा विकल्प है जो सागौन और शीशम से और कम समय में 15-1 साल में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इस तरह से विकल्प बहुत सारे हैं, हमें ये देखना होगा कि हमारे आसपास कहाँ पे हमारा मार्केट है, किस चीज की मार्केट डिमांड है, तो उस हिसाब से हम ज्यादा जो वृक्षों का चयन कर सकते हैं
0: जी।
1: तो मेरे हिसाब से तो हमें और विविधीकरण की तरफ जाने चाहिए जो इंडस्ट्रियल वुड्स हैं
0: जी। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब अपन ने बात बताई कि हमारे किसान भैया हैं इनके अलावा भी दूसरे पेड़ लगा सकते हैं जो अपन को अतिरिक्त लाभ दे सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज हम अपन से पूछ बचाए कि हमारे जो किसान भैया रहे हैं पेड़ तो लगाते ही है, और जब पेड़ जैसो कि अपन बता रहे पेड़ अपन को कई प्रकार के जो अपन ने बताए हैं अपन जो कृषि वानिकी में लगा सकते हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब अपन ने बात बताई। डॉक्टर साहब एक चीज और हम अपन से पूछ बचाए कि कम समय यानी कि कम अवधि वाले और ज्यादा अवधि वाले जो हमारे किसान भैया पेड़ जो अपन बता रहे कृषि वानगी में, तो कम अवधि वाले और ज्यादा अवधि वाले वृक्षण को अनुपात कैसे मिला हो जाए कि जिसे हमें किसान भैया को नियमित अंतराल पे लाभ मिलता रहा है हमारे किसान भैया को।
1: उसमें हम ऐसा उपाय कर सकते हैं कि जैसे अभी आप बताया शीशम सागौन परंपरागत रूप से लोग लगाते हैं, इसी तरह जो है महुआ चिरौंजी ये सब भी वन पे लगाएं जिसमें आपको इमारती लकड़ी और जो ये गैर वन उत्पाद जो है ये दोनों मिलते रहते हैं
0: जी।
1: और जो आपको कम समय में तो इनके

0: ये है कि इसमें कुछ जो इमारती लकड़ी 20-25 साल में देंगे तो आपको लंबे समय तक रखना पड़ेगा मेंड पे, और फसल के साथ भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे।
1: जी
0: शॉर्ट टर्म के लिए आप ये जो मैंने बताया अभी जो मीडिया डूबिया है, सुबबुल है, आपका घमार है, महारुख है, ये सब
1: जी
0: आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप 3 साल में लुगदी के लिए इस्तेमाल हो जाता है, जैसे यूकेलिप्टिस, पॉपुलर, ये सब जो है पॉपुलर तो इस यहाँ के लिए सूटेड नहीं है, लेकिन इसी तरह जो है आपका जो प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए इसमें मीलिया डुबिया कदम है ना, ये सब जो है आपका जो है 5 साल में दे दें। और कुछ आगे जो है मीलिया डुबिया इसमें इसलिए ज़्यादा हम लोगों को कर रहे हैं क्योंकि मीलिया डुबिया स्केलेबल प्रोडक्ट है, मतलब 3 साल में अगर आपको अच्छा और मिल रहा है तो 3 साल में आप लुगदी के लिए बेच दीजिए उसको,
1: जी
0: 5-6 साल में आप प्लाईवुड में बेच दीजिए, 10-1 साल में आप फर्नीचर में बेच दीजिए, 12-15 साल में आप उसको इमारती लकड़ी में। तो इस तरह के भी पेड़ों का चयन हम कर सकते हैं कि हमें जो अलग अलग स्टेप पे आपको इनकम जो मिलती रहेगी फार्म से।
1: बिल्कुल अच्छी डॉक्टर साहब आपने बात बताई कि हमारे किसान भैया ने कम समय और ज्यादा समय के वृक्ष लगा के अनुपात के हिसाब से हमारे किसान भैया ने लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ने लंबे समय के लाने पेड़ लगा दो, अब अपन को बीच में कोई फायदा नहीं मिलने है। तो बिल्कुल अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब एक चीज और हम अपन से पूछना चाहें कि कछु ऐसे वृक्षण के भी अपन नाम बताओ जो हमारे किसान भैया ने कम पानी में, यानी कि पानी भी अपन को कम लगवे और जो भी कृषि वानगी में वन पेड़ लेवे उनसे अपन को मुनाफा भी किसान भैया को अच्छा हुए और अपनी लागत भी कम लगवे।
0: ज्यादातर जो भी पेड़ बताया ये जैसे आपका महारुख है इस कम पानी में हो जाता है, जो आपका मीलिया डुबिया भी है वो भी अर्धशुष्क जलवायु का ही पौधा है,
1: जी
0: और अकेशिया की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, नीम भी उसमें है। तो इनमें क्या है कि आप कम पानी में इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे एक समस्या हो रही है बरसात सीजन में कि 15-20 दिन तक पानी भर जाता है लो लाइंग, वहां पे जो है आपको जामुन वगैरह इस तरह के पौधे भी लगा सकते हैं, इवन
1: जी
0: कीकर भी लगा सकता है, बबूल जो है तो ये भी लगा सकते हैं। बहुत सारे जो कम उपजाऊ की जमीन है वहाँ और पानी भी कम है वहां के लिए भी जो है आपके अकेशिया की अनेक प्रजातियां हैं जो हम उसमें लगा सकते हैं। इनके अलावा जो मिलिया है, यूकेलिप्टस है,
1: जी
0: और आपका जो जंगली जो प्रजातियां हैं उसमें आपका सेनेगल है, अकेशिया सेनेगल है, ये भी हम लगा सकते हैं।
1: अच्छी बात डॉक्टर साहब अपन ने बताई कि कम पानी की जो अपन ने पेड़ बताए हैं हमारे किसान भैया ने लगा सकते हैं, उनसे भी फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और हम आपसे पूछना चाहें, कछु या तो भ्रांतियां हैं कि हमारे किसान भैया ने सोचने लगे कि अपन वृक्षारोपण कर रहे थे, कृषि वानगी में वृक्ष कर अपन लगा रहे तो अपनी फसलों को फायदा की जगह नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान ऐसा पहुंचाते हैं कि हमारे किसान भैया ने कहने लगे हमें मेड़ पे वृक्ष नहीं लगाऊंगे। तो ये भ्रांति के लाने अपन का कछु क्या बोझा डॉक्टर साहब?
0: नहीं, ये आपने सही बताया है कि अभी किसानों में भ्रांतियां हैं कि खेतन में पेड़ लगाएं तो जो है ज्यादा नुकसान फसल को होता है,
1: जी
0: ऐसा नहीं है। खेत में जो है पेड़ लगाने से जो है भूमि का जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जो सॉइल हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, आप वन सॉइल हेल्थ, तो सॉइल हेल्थ बढ़ता है, आपका मृदा का क्षरण रुकता है, आपका पानी का क्षरण रुकता है,
1: जी
0: और पूरा जो है जो इको सिस्टम है हमारा उसका खेत का वो बढ़ता ही है। जो खेत के बाउंड्री में लगाएं या बीच में लगाएं, जैसे बहुत सारे नत्रजन फिक्सिंग जो पेड़ हैं तो उसमें माना जाता है कि वो जो है 75 से 80% जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, मतलब
1: जी
0: उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पे खेत में लगाने की जरूरत नहीं, वो दलहनी वृक्ष प्रजातियां ही जो है उसका उसको कंपनसेट करें। इसी तरह जो है पेड़ के पत्तों वगैरह से जो है उसका ह्यूमस बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन के कारण जो है बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं खेतन में हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, जो जड़ हैं उसके पेड़ों की जड़ हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन में जो है फसलों को जो है मदद करती हैं। इसी तरह वो पानी का जो जल स्तर नीचे से ऊपर को बढ़ाती हैं,
1: जी
0: तो ऐसे बहुत सारे वाष्पीकरण को कम करती हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। और पेड़ों का जो जो आपका इस सतत कृषि के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं इस जलवायु परिवर्तन के दौरान, तो
1: जी
0: वो हमें लक्ष्य उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात बताई कैसे कि हमारे किसान भैया को जी भ्रांति रखती है कि हमारे किसान भैया अगर पेड़ पे खे मेड़ पे अगर पेड़ लगा रहे हैं तो होते अपनी फसलों को नुकसान हो जाते। तो ऐसा कछु नहीं है डॉक्टर साहब। देखो अपन ने बहुत अच्छी तरह से बता भी दी और समझा भी दी, हमारे किसान भैया ने देखो समझ भी दिए। डॉक्टर साहब एक चीज और हम अपन से पूछना चाहें कि जो हमारे किसान भैया ने पेड़ लगा रहे हैं जो अपनी फसलें होती हैं और जो हमारे किसान भैया बीच में फसलें लेते हैं तो उनको पानी की कछु कम मात्रा लगत है का अगर पेड़ अपन लगा लेते हैं अगर खेत में तो?
0: बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। अगर हम खेत में पेड़ हैं हमारे तो पानी कम लगेगा, कम से कम जो है 30% पानी की रिक्वायरमेंट 40% तक कम हो सकती है।
1: जी
0: और ये आपने देखा होगा कि जहां पेड़ हैं खेत में वहां पे वो जैद की भी फसल ले सकते हैं।

0: क्योंकि जायद में जो है सबसे कम पानी की जो है उपलब्धता रहती है और उस
1: जी
0: समय खेत खाली रहते हैं तो वो किसान नहीं करवाते। लेकिन अगर किसान के खेत में 400-500 प्रति हेक्टेयर अगर पौधे हैं तो आराम से वो जो है दो सिंचाई में भी पौधा अच्छा मतलब फसल ले सकता है, अंतर फसल। बाकी खरीफ और रबी सीजन में तो आप ले ही सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
1: जी
0: लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो वाष्पीकरण को कम करता है और आप उसके आवरण को वृक्षावरण को देखते हुए फसलों का चयन कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी फसलें हैं जो आपकी अदरक हल्दी अरबी ये सब जो है छाया में होती हैं, वो
1: जी
0: अच्छे से
1: जी
0: उगाई जा सकती हैं। और जब शुरुआती दौर में आप पूरी जो है धूप पसंद करने वाली फसलों को लगा सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात अपने डॉक्टर साहब। एक चीज डॉक्टर साहब हमारे जहन में आ रही किसान भैया की तरफ से कि जो हमारे किसान भैया ने पेड़ लगा रहे तो अगर जैसे अगर अपन लंबे समय वाले वृक्ष रोपण कर रहे तो उनकी कटाई छटाई को का कछु तरीका है, का कछु प्रबंधन है कि कब से कब है अपन को कटाई करने है, कै साल तक अपन को उनकी कटाई छटाई करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम ज्यादातर हमारे ऐसा वो रहता है कि पेड़ लगा दिया तो अपने आप हो जाएगा
1: जी
0: और हम चाहेंगे कि उससे बहुत अच्छी इमारती लकड़ी मिल जाए या कोई भी जो है औद्योगिक उसकी कास्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। पेड़ लगाना ही सिर्फ वो नहीं है, उसके साथ उसकी कटाई छिटाई बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे किसान सागौन के पेड़ मेड़ पे लगाते हैं
1: जी
0: और उसको जो है वैसे ही बस छोड़ देते हैं, तो कम से कम जो 1-2 साल तक उसको, 1 साल तो कम से कम उसके साथ डंडा एक जो है 6-7 फीट का लगा के रखें, जिससे जो है तना सीधा, तना सीधा होगा तभी उसकी इमारती लकड़ी की जो है वैल्यू बढ़ेगी,
1: जी
0: अगर टेढ़ा ओढ़ा होगा तो कोई मतलब नहीं। इसी तरह जो है बहुत सारे में जो है 7-8 फीट से ही ब्रांच शुरू हो जाती है, शाखाएं निकली रहती है बहुत से, आम के जैसा जो है सागौन का पेड़ दिखता है, तो
1: जी
0: ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें उसमें जो है जितना सीधा लट्ठा जाएगा उसका तभी हमको उसकी लकड़ी में, तो प्रूनिंग उसकी बहुत जरूरी है, समय समय पर प्रूनिंग होती रहनी चाहिए। और इवन उसके जो बड़ आती हैं जब नई उखले खोपले फूटती हैं उसी समय जो है बोरे से रगड़ दें तो बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि बाद में जब उसकी शाखाएं मोटी हो जाती हैं तो गांठ बन जाती हैं, उसको काटेंगे भी तो गांठ बन जाती है, वो गांठ हील होने में बहुत टाइम लगता है और उससे लकड़ी की वो कम होती है। एक जनरल रूल है कि कम से कम 1/3 हिस्सा ही जो है ऊपर का छत्र जो है पेड़ का वो रखना चाहिए, 2/3 उसका सीधे का ट्रंक रहना चाहिए, जो लट्ठा रहना चाहिए,
1: जी
0: तो इस उसमें करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये खाली बाउंड्री पे नहीं है, सीधे सीधे सभी उसमें करना चाहिए जिससे जो है उसको मेंटेन रख सके।
1: बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बात बताई। कटाई छटाई की जैसे अपन बात करें तो इको का कछु समय है छटाई करवे को।
0: ये ज्यादा अच्छा जो है जाड़े का सीजन में रहता है, उस समय जो है डोरमेंट रहता है पौधा, सुसुप्त अवस्था में रहता है, तो उस समय कटाई छिटाई उसकी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप जो है फरवरी उरवरी में भी जो है जैसे खोपली निकलती है उसमें आप रगड़ लें उसको, उसको स्टेम को, तो जो है आपको प्रूनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बोरे से ही आपकी प्रूनिंग हो जाएगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और हम अपन से पूछना चाहें कि मैं किसान भैया ने देखो कृषि वानगी के लाने वृक्षण को चयन भी करते हैं, पौधरोपण भी करते हैं, तो डॉक्टर साहब कृषि वानगी योजना के तहत ऐसी कौन सब्सिडी या पौधा को मिलवो जिससे हमारे किसान भैया को कार्बन क्रेडिट को लाभ उठावे को मौका मिल जाए।
0: सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोत्साहन के लिए जो है कृषि वानिकी के लिए स्कीम चलाई गई हैं, अभी 7-8 साल तक जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का जो कृषि वानिकी मिशन चला
1: जी
0: और अभी वो कृषि वानिकी को जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ जोड़ दिया गया है। सरकार के मानना है कि जो, क्योंकि जो भी हम कृषि वानिकी है वो कृषि फसलों के साथ ही होगी जिससे जो है हमें उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
1: जी
0: तो कौन सा पौधा किस फसल के साथ रहेगा ये कम्बिनेशन, ये मॉडल बहुत सारे बने हुए हैं
1: जी
0: और इनका ये है कि किसान की जो है आय बढ़े उससे, कृषि से फसल से भी और पेड़ों से भी। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें हैं जो बंड पे, जैसे खेतों के बंड पे आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हर खेत पे मेड़ और हर
1: मेड़ पर
0: मेड़ पेड़
1: पेड़
0: होना
1: बिल्कुल जी
0: चाहिए, तो उसकी और अभी माँ के नाम एक पेड़ भी उन्होंने शुरू किया, तो इनका उद्देश्य यही है कि खेत में ज्यादा पेड़ रहें और ये पेड़ उत्पाद भी दें। दूसरा कार्बन क्रेडिट की आपने बात की, अभी सरकार ये भी कर रही है कि जो खेतों में जैसन पेड़ हैं
1: जी
0: स्पेशली जो लंबे समय तक रहे हैं वो पेड़ जो है आपको क्रेडिट उपलब्ध कराएं, कार्बन क्रेडिट से आप जो है मार्केट में बिक सकता है, वो थोड़ा उसकी प्रणाली जटिल है लेकिन
1: जी
0: वो संस्थागत सिस्टम है, संस्थागत नियम के तहत वो किया जाएगा, उसमें कुछ किसानों का समूह या पीओ इस तरह से जो है वो किया जाएगा,
1: जी
0: क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक क्रेडिट जो है आपने कार्बन क्रेडिट जनरेट किया उसको कोई वैलिडेट करेगा और उसके बाद वो मार्केट में बिकेगा, तो कम से कम एक 150 क्रेडिट होने चाहिए तभी वो मार्केट में बेच सकते हैं, तो उसके लिए योजना बन रही है सरकार की तरफ से। और आने वाले समय में जो हमें डायरेक्ट उत्पाद मिलता है लकड़ी या लुगदी या और उत्पाद के अलावा उस पेड़ से, जैसे महुआ चिरौंजी इस बुंदेलखंड में बहुत है,
1: जी
0: अगर
1: जी
0: वो खेतन में है 60 साल 50 साल तो वो उसका कार्बन क्रेडिट देंगे,
1: जी
0: तो वो खेत में

0: रखने का पसंद करेगा उसको, क्योंकि ज्यादातर होता है कि आदमी लंबे समय तक क्यों रखे, तो जो लंबे समय तक रखने वाले उनसे कार्बन क्रेडिट एक और एडिशनल मिलेगा। तो ऐसा भी जो है आप कृषि के साथ जो है पेड़ों का चयन कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी डॉक्टर साहब अपन ने बात बताई। डॉक्टर साहब अपन अपनी तरफ से कहा कि किसान भाई हमको सुझाव दबो जाओ कृषि वानगी के लाने।
0: हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जैसे भी कृषि वानगी नीति सरकार ने 2014 में बनाई थी कि जिससे जो है किसानों और खेतों में जो है ज्यादा ज्यादा लोग पेड़ लगाएं, और अभी जो गवर्नमेंट का इस प्रोग्राम में चल रहा है कि खेत बचाओ अभियान, तो खेत बचाओ अभियान में भी जो है कृषि वानिकी भी एक उसका कंपोनेंट है
1: जी।
0: तो खेत में जितने पेड़ रहेंगे उससे जो है ज्यादा समृद्धि आएगी, और आज के जो जलवायु परिवर्तन का जो दौर चल रहा है उसमें तो ये और अति आवश्यक हो गया है कि अगर हमें सतत कृषि से जो लाभ पाना है अब लंबे समय तक वो देखना है तो हमें खेतन में पेड़ रखने ही पड़ेंगे, और खेत में पेड़

0: सरकार ने 2014 में बनाई थी कि जिससे जो है किसानों और खेतों में जो है ज्यादा ज्यादा लोग पेड़ लगाएं। और अभी जो गवर्नमेंट का इस प्रोग्राम में चल रहा है कि खेत बचाओ अभियान, तो खेत बचाओ अभियान में भी जो है कृषि वानिकी भी एक उसका कंपोनेंट है।
1: जी
0: तो खेत में जितने पेड़ रहेंगे उससे जो है ज्यादा समृद्धि आएगी, और आज के जो जलवायु परिवर्तन का जो दौर चल रहा है उसमें तो ये और अति आवश्यक हो गया है कि अगर हमें सतत कृषि से जो लाभ पाना है, अब लंबे समय तक वो देखना है, तो हमें खेतन में पेड़ रखने ही पड़ेंगे। और खेत में पेड़ रखेंगे तो जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा प्लस हमारी आमदनी भी बढ़ेगी।
1: बहुत अच्छी डॉक्टर साहब अपन ने बात बताई। जैसो कि आज अपन बतकाव कर रहे थे सही पेड़ सही लाभ, वानगी वृक्षों का चयन और प्रबंधन, और आज अपन के बीच में डॉक्टर MJ डोबरियाल जो कि प्राध्यापक हैं कृषि वानगी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। डॉक्टर साहब अपन पधारे, हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी कृषि वानगी के बारे में जानकारी दी, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे RLB CAU रेडियो कृषि पाठशाला की कड़ी 9। अगली कड़ी में हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: खेत से खलिहान तक, बीजों के चयन से लेकर आधुनिक तकनीक के उपयोग तक, कृषकों के समग्र विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु करोड़ों किसानों के हित में प्रयासरत रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी लेकर आया है कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि की वैज्ञानिक जानकारी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से आकाशवाणी झांसी द्वारा प्रसारित RLB CAU रेडियो कृषि पाठशाला।
4: हाँ भैया, देखो अब अपन RLB CAU रेडियो कृषि पाठशाला को जो भाग 9 सुन रहे थे, और अब अपन को सुनवा रहे हम एक वर्षा गीत। कलाकार हैं बीरपाल सिंह यादव और उनके संगी साथी।

वो जो वर्षा गीत सुन रहे थे, और देखो खरीफ में हमारे किसान भैया अब धान भी बोने लगे हैं। वैसे बुंदेलखंड में धान के लाने रकवा कम है, तो लेकिन अब धान की भी ऐसी वैरायटी आ गई कि कम पानी में भी धान हो जाते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखें कि धान की रुपाई से पहले उनकी पौधन की जड़न को उपचारित जरूर कर ले। जैसे कि नर्सरी में से अपन पौधा ले आए तो उनको अपन को उपचार जरूर करने हैं, और उपचार के लाने दो विधियां, एक तो जैविक विधि है, एक रासायनिक विधि है। जैविक विधि में ट्राइकोडर्मा विरडी 100 ग्राम ले लो और सूडोमोनास 100 ग्राम ले लो, और 10 लीटर साफ पानी में घोल के, और फिर जो अपन ने पौध लई है उनकी जड़न को एक 10-15 मिनट रखो, उसके बाद उन्हें फिर रोपित कर दो, तो बहुत सारी बीमारियों से, रोगन से बचाव हो जाते हैं। और रासायनिक विधि में कार्बेंडाजिम है, ये की 10 मिलीलीटर मात्रा लो, और इमिडाई क्लोप्रेड ई की 10 मिलीलीटर मात्रा। एक बार और बता दें अपन को नाम, कार्बेंडाजिम या इमिडाई क्लोप्रेड 10 मिलीलीटर, और जाको भी अपन को 10 लीटर में घोल बना लेने, और जो अपनी पौध है उनकी जड़न को 10-15 मिनट में रख के, और इनके लाने फिर अपन को थोड़ा सा छाया में सुखा के और फिर उनको रोपित कर देने हैं, तो अपनी जो धान की फसल है वह स्वस्थ हुई है और अपन को उत्पादन अच्छा मिले और रोग राई कछु भी फसल में नहीं लगे। और अब हमारे कार्यक्रम को हो रहा समय पूरा, तो अब राकेश भैया को देवा गया, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल FM के 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आपसे कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, नए पुराने गीत सुहाने। समय होगा शाम 6:35। शाम 7:31 पर आज आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। एफएम एंड के 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए इस कार्यक्रम में सुनते हैं नए पुराने गीत सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बंटी और बबली से। लीजिए इस फिल्म सुनते हैं अलीशा चेनाई, शंकर महादेवन और साथियों को।

0: kare kare naina.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम. और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है. हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है. रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं. मैं हूं आपका कैलाश खेर.
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना. जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना. हर संकट का समाधान है भारतीय सेना. भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Sena.
1: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बेटा से। लीजिए इस फिल्म सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण को। शब्द रचना समीर की है, संगीत आनंद मिलिंद का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बादल से। लीजिए इस फिल्म सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुखविंदर सिंह व साथियों को। गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बरसात से। लीजिए इस फिल्म सुनते हैं अलका याग्निक, कैलाश खैर, प्रियंका चोपड़ा को। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

हम हंसते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो नादान इतना भी नहीं समझते। ये अदा है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। लीजिए इस फिल्म सुनते हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों को। शब्द रत्न जावेद अख्तर की है, संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सौतन की बेटी से। लीजिए इस फिल्म सुनते हैं अनुराधा पोडवाल को। शब्द रचना सावन कुमार की है, संगीत बेतपाल का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नए पुराने गीत सुहाने कार्यक्रम। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएमएन के 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:19 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से लखनऊ केंद्र से रिले करते हैं।

0: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो

0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने, आता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ, कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है, और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
5: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुँचाने का कार्य कर रही है।
4: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुँच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
6: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
4: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर

0: बात की गई।
1: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे उस पर चर्चा हुई है, और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए की इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बीबी जयराम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता

0: इसका भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गाँव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1,501 प्रतिभागियों ने 3,032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी

0: विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहाँ हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
6: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर। ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
7: Foes. I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
8: Heads.
9: Heads is the coin. It's heads.
8: We'll have a bowl.
7: Heads it is. Australia has won the coin toss. So what are Australia going to do?
8: We're going to have a bowl. Beautiful day out here and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
7: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
8: Yeah, there's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
7: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the quad awareness. Is Perry playing? Any other changes to the side?
8: We've got no changes. So, yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday. And, yeah, very excited to come out here.
7: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's got to beat that, doesn't it?
8: Oh, it sounds pretty wild, to be fair. But, yeah, special day.
7: And 5-day gap. Did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
8: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and, started training over the last couple of days. So we're in a really good place.
7: We'll enjoy everything that is a final.
8: Thanks, Josie.
7: Matt, if it had fallen your way, would have things been different?
10: I was going to bowl as well, actually. It's a fresh wicket. Runs on the board in a final is no bad thing. So, happy to be stood here batting first.
7: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
10: No, we're unchanged.
7: Yeah, stick with that as well. Talk to me about your squad. And I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards, captain a team on this ground in 2009. Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
10: It would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've produced some really good cricket along the way. So, hopefully we can do the same again today.
7: What wins it for England today?
10: One more run than the opposition, I suppose.
7: It's as simple as that. All the best. Go well, Nat. Australia have won the coin toss today, and they're going to bowl first in the final.
11: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बोलिंग करने का फैसला किया। गर्मी बढ़ रही है लंदन में, विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए, उसी गर्मी को हम यहाँ पे कायम रखते हैं। वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता आपने, सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार
12: इस टीम पे, इस पिच पे?

0: अगर देखें ना तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है. अगर और सी अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफी स्विंग में फायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने. एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर. एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है, तो वो स्पिनर पे ज्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
1: ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगी. तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूँ. हमारे नंबर है 2342108, दिल्ली का कोड 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342108, 2342108. गीतांजलि
2: जी, मुनीष बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं, जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मोना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी, चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट. लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है, उनको ये एज मिलेगा.
3: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा, बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे, तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर, और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फायदा मिला. इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते. और काफी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफर रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नजर आती हैं. इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नजर आ रही है, तो काफी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला
2: जी. और अभी रोचक बात यह है, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से. नमस्कार जी, नाम बताइए अपना. जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं. जी टोटल की चर्चा जरूर करेंगे, सोफिया की सिलेक्शन से खुश नहीं है. सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम.
4: देखिए, दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए. और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में यह है कि आप फील्डिंग करें. बट मैं हर समय ये कहता हूं कि इतने बड़े मंच पे आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर. और इंग्लैंड के कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए हैं लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा. आपके सपोर्ट, जो कहते हैं ना, सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं इस समय, तो चीजें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180. देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट. इसके ऊपर हम देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, 170 रन एक ओवर पहले चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे, स्टिल 1 ओवर टू स्पेयर दे फिनिश द गेम. तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है. तो इसलिए 170-180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली.
2: चेतन अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड पर,
4: 180 बना दीजिए.
1: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-85, उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी. बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे एक प्लेयर है एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं. शी इज बीन एन ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में. हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन व्हाट डेप्थ है उनके बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, अगर हम देखें क्या खास आपको

0: दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
1: देखिए, उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, एलिसी पेरी, वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में ही फायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देती है। और उनका ये खासियत, उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, और वही वहां पे खड़े होके उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है, एंड उसकी वजह से वो काफी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फायदा है। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज खेली हैं, और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
0: मोना, आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूंगा, ये अलिसा पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
2: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी, तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले दो प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है, वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। सेवेंथ, अभी तक वो छह बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है, उन्होंने काफी अच्छा सफर देखा है। और 2023 से, जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
3: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते, हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
4: नमस्कार जी, नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा।
3: जी सभी को याद है हैट्रिक।
4: जी जी जी जी,
3: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
4: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को
3: जी।
0: पाजी, वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
3: एक्साइटमेंट
0: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई। अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडेप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस?
4: देखिए, कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए, डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है। इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन्स बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बनाए हैं। यहां पर एडवांटेज, अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूं, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए, आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेज कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की, 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज जाता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा, अगर मैं कैप्टन होता, कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेज करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूं तो। लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
3: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें, तो जो इंग्लैंड ऑफकोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाय करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहां ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रांग टीम नजर आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई है, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
2: देखिए, अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीथर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की

0: थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन और हीटर नाइट और डैनी तीनों प्लेयर के पास काफी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का. वो कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है. और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप. और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो अभी ऑस्ट्रेलिया की कोच है. तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है.
1: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल. आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20. हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रनअप ले रही है, वो थोड़ा सा रनअप ले रही है. तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये. और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोवर्स में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाएं.
2: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है, तो उनके ज्यादा रन है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास. एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं, वो शानदार है, काबिले तारीफ है. और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत जबरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफी बेटर है. इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफी बेटर करते हुए दिखाई दी है. तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग. आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज्यादा मैटर करती है.
1: ऑलराइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आए और एक अगला सवाल पूछे, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में. पाजी, आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी है, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है.
3: जी, और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की, चेतन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हेथर नाइट है और ऑस्ट्रेलियन की नई कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टनसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
4: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई है अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल. अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूंगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव. और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं. मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूं कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू. देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा. और अभी तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखे ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन. जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है, दे नेवर वॉन्ट की कॉन्टेस्ट रहेगा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रहे थे कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं. होम सपोर्ट होगा, अपनी विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट. बट मैं सिर्फ चाहता हूं बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे, एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग दैट.
1: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
4: देखिए हो सकता है. देखिए आप, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं वो, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो, मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी, और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते. तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ, स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स.
1: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए,
3: बिल्कुल वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं. हेलो, नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना. हाँ जी,

0: जी, अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल, दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पे चीजें वर्कआउट होंगी। बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, हमेशा हम यही कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्था सारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीष जौली।
1: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड?
2: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है। ऐसे भी कई बार हुआ है और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें। लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है, और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज्यादातर सारे प्लेयर्स जो है वो हम WPL में इनको देखते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजुडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
0: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे। अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नजर आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद है?
3: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है। एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं। आप देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को वो डिफरेंट होता है, वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए। तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है। एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो बेटर है, चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है।
1: पाजी, बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूं, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
4: देखिए, मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर, तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है। तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 एंड आई वॉन्ट सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग इट। तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वॉन्ट बी ए कंटेस्ट। आई वॉन्ट इंग्लैंड टू स्कोर 180।
1: मोना, क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का, हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया के नाम।
2: हाँ, बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया।
1: ऑस्ट्रेलिया, राइट। वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली, गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे, और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20, और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ। फर्स्ट बॉल 20।

0: तो आइए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर है भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
1: नमस्कार। है क्रिकेट के इस महाकुंभ में आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है और किसके बीच में, पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में। और ऐसे में इंग्लैंड, जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है। तो ये एक अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं, चर्चा जारी रहेगी। पिच नंबर 10 जिस पे थोड़ी सी घास है नीचे से, वो काफ़ी सूखी हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग सेंटर पिच हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है। तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं, और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूं प्रकाश वाकणकर।
2: थैंक यू विनीत एंड गुड इवनिंग व्हेयरएवर यू आर लिसनिंग। इट्स अ बिग डे एट लॉर्ड्स वेयर द T20 World Cup final between the old rivals, as Vineet has described, is going to be played, and one of the two prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home, and they have also never beaten Australia. Australia looking for their 7th title, England for their 2nd, and those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsole really was the key difference, Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors. It seems to be good conditions, as Vineet described. It's a fresh pitch, and England will have to get a above par score, Vineet, because this Australian juggernaut is not going to be stopped by anything short of that.
1: सबके दिमागों में यही बात है प्रकाश, की किस तरह से वेल ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं। और आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है ये ऑस्ट्रेलियाई टीम। एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शायद एक दो ऐसे हैं क्रिकेटर, विकेट कीपर को हटाई दीजिए, बैटर हैं सारे के सारे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इनके पास इतने विकल्प हैं मैदान पर कि अगर कोई दिन आपका नहीं है, किसी दिन आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। दो, जैसा कि मैंने कहा कि दो भारतीय ऑफिशियल्स हैं, उनमें से एक इस समय बॉलिंग वाले छोर पर नज़र आ रही हैं, वृंदा राठी, और इसके साथ वो मशहूर वेस्ट इंडीज़ की अंपायर जो जिनका कि ये 5वां T20 विश्व कप है, जैकलिन विलियम्स, वो शायद स्क्वायर लेग पे अभी नज़र आएंगी। तो ये स्थिति है कि जो बहुत ही बढ़िया शानदार जोड़ी है, और वो खिलाड़ी, वो बैटर डैनी व्हाइट हॉज, जिन्होंने कि सबसे अधिक रन बनाए हैं अब तक टूर्नामेंट में, वो पारी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड की ओर से आ चुके हैं। एमी जोन्स विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, पारी की शुरुआत करेंगे, साथ में 7 पारियों में 89 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। तो डैनी व्हाइट हॉज दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं, और दिलचस्प होगा कि एक तो शुरुआत किस ओर से होती है, पेविलियन एंड से या नर्सरी एंड से, दूसरा ये कि क्या होता है। लूसी हैमिल्टन और किम गार्थ की जोड़ी रही है, एक मैच को छोड़कर हर बार इन्होंने ही नई गेंद का इस्तेमाल किया है। 7 मैचों में 5 विकेट लेने वाली लूसी हैमिल्टन, देखिए, और किसको, मैगन शुल्ट्स को बाहर बैठा रखा है इन्होंने। बाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं, एक बाएं हाथ के बॉलिंग का विकल्प उनको मिलता है, लेकिन किम गार्थ की शुरुआत होने वाली है उनके ओवर की 1-6।

0: के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल दो खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद। एक स्लिप तैयार है और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं, उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी, एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई स्टंप्स के पास से नहीं होकर बल्कि थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली ही गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। सावधानी रखी, कुछ नहीं छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलीन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूमकर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी और यह शुरुआत हुई खाते की 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था, लगभग टू ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया और उस पर 4 रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का। फील्डिंग का देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है, नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो 4 रन वहां पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोप के ऊपर, उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो 4 रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है, और इंग्लैंड फाइनल्स में 4 रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार। किम गार, और इस बार ज्यादा ललचाती हुई गेंद थी, खेला उसको पॉइंट पे, फील्डर है बाउंड्री लाइन के नजदीक, फील्ड कर लिया गया। पिच को अगर आप देखें तो काफी घास है, लेकिन नीचे से काफी सूखी नजर आ रही है, और जैसा प्रकाश ने बताया बिल्कुल फ्रेश है, अब तक इस पर कोई मैच हुआ नहीं है। आमतौर पर स्क्वायर बाउंड्री 58 और 65 की रही है लॉर्ड्स में, आज लगभग लगभग 64-64 की रहेगी, दोनों ओर एक सार नजर आ रहा है स्क्वायर बाउंड्री का जो इलाका है। 5 रन बगैर नुकसान के, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने। व्हाइट हॉट जो जबरदस्त फॉर्म में है, किम गार्थ सामने है, और क्योंकि बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है, उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है, और इसी से आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी बैट की और स्टंप्स के पास से निकल गई। क्या आज का दिन इंग्लैंड का दिन साबित होने वाला है, क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है।
2: Certainly looked like that on that occasion, dropped between the batter and the stumps and then bounced over the stumps, unbelievable luck।
0: किम गार्थ 5 विकेट लिए अब तक टूर्नामेंट में, बिल्कुल स्टंप्स के पास आके शॉर्ट एंड वाइड कट किया उसको, पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, बैकवर्ड फील्ड किया गया, 1 रन और। तो दिलचस्प है, आमतौर पर जो सीम का इस्तेमाल करता है वो पेविलियन एंड से बॉलिंग करता है, यहां जहां तक संभव पेविलियन एंड से सीम बॉलर्स जो पिच का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और नर्सरी एंड से स्विंग बॉलर्स, और लाजमी है कि हैमिल्टन उस ओर से बॉलिंग करेंगी जो खासा स्विंग कराती हैं। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, हाफ वॉली स्विंग होती हुई, और क्या फील्डिंग, कवर क्षेत्र में शानदार क्षेत्र रक्षण, रन नहीं लेने दिया, यही है T20 क्रिकेट का मजा।
3: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर लूं।
5: ये मत जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल

0: ये हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। मां बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
1: मैं अभी लाता हूँ साहब।
2: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
0: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
3: नहीं साहब, नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
0: अरे भाई, ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
2: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझे, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। अब रीटा,
4: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गर्म?
3: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
2: चलो अब साहब से साफ साफ बात कर लो।
0: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
3: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है साहब।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
2: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
2: ना, ना, ना, ना,
0: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
3: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
0: वो तो नजर आ ही रहा।
3: क्या मतलब साहब?
0: नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
3: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब, कोई नुकस नहीं, घर का सब काम काज जानती है, खेती में काम करती है साहब, घर का चूल्हा चक्की।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए, शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
3: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
3: तुम्हारी बात का साहब।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
3: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के बात ये कि
2: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ सब बात कर दो।
3: चल तू बोल दे साफ साफ।
0: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
3: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दे साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
0: मुझको?
3: जी
0: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
2: साहब? आप शादी कब करेंगे?
0: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था, ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
3: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
0: मेरी शादी? क्या मतलब?
3: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफिक ही हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
0: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
2: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को साहब बोल दो, साहब का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
3: ठीक कहती है रे तू, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा साहब माफी देना साहब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया साहब। चल लक्ष्मी।
1: क्या बात है साहब, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
0: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
4: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
3: बात ये मेन साहब कि मेरा
2: तो पीछे हटो,

0: मेमसाहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेमसाहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम ही बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
1: बिल्कुल ठीक।
2: रीटा, तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? कस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
1: ये भी ठीक।
2: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
1: कभी नहीं हो सकता।
2: क्या नहीं हो सकता?
1: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
2: ये कोई जबरदस्ती है?
3: चलो लक्ष्मी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
2: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
4: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
5: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
1: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
5: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
1: सलाम
5: साहब।
1: सलाम
5: मैम साहब।
2: बहादुर, इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ा।
3: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
1: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
2: Good idea. मैं बस गया और आया।
6: विम साहब जी, साहब किधर गया?
1: अंदर कमरे में तैयार होने।
6: अच्छा,
1: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
6: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब। हाँ, हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
1: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
6: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाया इनको।
1: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
6: ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
1: हाँ,
6: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
1: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
6: थैंक यू मेम साहब, थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरि मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन टमैलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और

0: उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नौसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के

0: रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक

0: श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिव हरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

0: right, right, right. All right.
1: How old dear, how old dear, how old

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

0: राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।
1: मैं

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमि

0: दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: उद्यमराज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है। यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

उफ, ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।

कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

0: कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।
1: ये आंसू मेरे

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: छाए गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे। फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: बस वही हूँ।
1: जब जब फूल खिले आनंद बख्शी कल्याण जी आनंद जी।
0: रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा।
1: दो बदन शकील बदायूनी रवि।
0: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
1: हमराही हसरत जयपुरी शंकर जयकिशन।
0: हुई शाम का ख्याल आ गया।
1: मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का। एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है। गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही और... बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे हैं और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है। आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती है जो उन्होंने पिरोई है। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का, ऊंची हवेली।

0: ये रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें बारह हाथ, जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा नवरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोताओ, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पांव को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहां पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यार

चेहरे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ, एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए जी, तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है असल में, फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात की।
1: शायद इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया, बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फणी मजूमदार जी को, और बाद में फणी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था।

0: और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी, 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने की सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या जी, किया जी। था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो। कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सेप्ट करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीजें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीजें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है, स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: बढ़ाएं गे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं।
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे, और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था, बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास से जुड़ता हूं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आई थी तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: टीमें आकर।
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आम तौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं उस तरह मुझे गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है
0: जी।
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा,
0: कामयाब होंगे
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ाई की, खींचातानी करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फलां जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं, तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले आना।
1: हाँ, बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ, यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया।
0: अच्छा।
1: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा।
1: तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
0: जिक्र करते,
1: हाँ, कि अरे फलां एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
0: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, तो कैसे मिला
1: इसका
0: था?
1: तो कमाल है, आपको मैं पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा,
0: रहेंगे।
1: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूं अकेले बैठ के तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
0: जी जी,
1: लक्ष्मी जी थे, प्यारी जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशि लाल नायर, कि एक सिचुएशन निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
0: अच्छा।
1: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफी साहब की चाहत थी क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा, मुझे मुन्ना कहते हैं ना
0: जी,
1: प्रिट नेम है, बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है, तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं اتنا خوش ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں.

0: देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं, क्योंकि रोज का काम उनका।
1: जी, जी।
0: वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया।
2: नफनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता था जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व, गाना जब बनता था ना, जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी। कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को
0: जी,
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी,
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी।
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ
0: क्या
1: पूरा हो गया जी, बिल्कुल।
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एसडी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था। और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए लड़ जाइए, ये सब बिहार का सिचुएशन देखकर, पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला, देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो।
0: अच्छा,
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अधिनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी जमाने में देखना भी हमारे लिए एक सपना था, फिर एक मौका ऐसा भी आया कि जब नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गवाए, फिल्म आवाज दे कहाँ है, और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी,
1: नात मन कवच जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा सारा, टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाये हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए।
0: अच्छा,
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
0: जी,
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो उसमें 4 सिंगर है, तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं चार चार पांच पांच गाने एक फिल्म में गाता था
0: जी।
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है, और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
0: जी जी,
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे।
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे। विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को आपके मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।